सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ है मुझे उबरिया, मरन काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पिछा, श्री अस्तुजू करिय हो रक्षा।

सक प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन

सर्वठोर मोहो सहाय दोस्त दोख तेरे हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबख सकल देहि को हरता दोस्त दोखियन को छय करता। श्री अस्तो जप

चौपाई संबत सत्रह है सैस पणिजय अर्ध सैस वंतीन के हिजय पादर सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री त्रत्र।

अपना जान करो रखवार, बाहें गहें की लाज बेचार। अपना जान मुझे प्रत परिय, चुन चुन सतर हमार।

इत्थं तरो भगवत्कोत्यान्न बहुर करो कपता बिदनान्न कृष्ण जथा मत्रितुर उचारो जू खोय कबले हो सुदारो कब्यो बाचे दोहरा जो निज

जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आए सप्रभ को पयो जन्म तरा जग आए। अब मैं कथा संचय

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्ग बास अकबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो यह कथा सुने अरगावै दुख पाप तह निकट न आवै बिस्न भगत की ए फल होई आद ब्याद छुआ सकै न कोई संबत सत्रह सहस पचावन हार्वती प्रथम

मांगा मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।

प्रताप। ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ भागी पाई, ब्रह्म ज्ञान को बैल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञान का खोज हम ईश्वर नान, ब्रह्म ज्ञान है परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञान की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञान का सकल मान वाहि, ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पेद, ब्रह्म ज्ञान का सदा आदि, ब्रह्म ज्ञान का कथ आन जया दा की, और ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञान की मत कान बखाना है, ब्रह्म ज्ञान की गात ब्रह्म ज्ञान जाना, ब्रह्म ज्ञान का अंदर नान, ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञान साध जीव है न मरता, ब्रह्म ज्ञान मुक्त जुगत जी का दात, ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष प्रदाता, ब्रह्म ज्ञान अनाथ अनाथ, ब्रह्म ज्ञान का सब उपराध, ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञान अवन रंकार, ब्रह्म ज्ञान की शुभ, ब्रह्म ज्ञान बन नारायण, ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन सरोपुर तार जवंतर नाम सर्व पीख भगवान ने मुख ने मुख ठाक नमस्कार नानक हुआ परस सगल ने ताराष्टपति मिथ्या ना ही रसना परस मन प्रीत निरंजन दर्स उपर त्रिय रूप न पीख नेत्र साधु कृह संत संकेत कर नाना सुना कहु निंद हत जन आस कमंद गुरु प्रसाद विखे अपर हर मन को वाहन मन दे टर इंद्रिय जेत पंच दुख तिरह तो नैन कुट मद्दी कुआ सा परस वैसन सो जे हुपुर सुप्रसन्न विष्णु गुमाय तो हुए पियन कर्म कर दो नि कर्म वैसन कर निर्म धर्म कह पर की छह नि वैश की ओर भगत कीर्तन संग्राज मान तनांतर सुमन गोपाल सबु पर्वत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जो पावे नानक वैसन परम का पावे भगवती भगवंत भगत करंग सकल त्याग दोष कह मान ते बिन सह सकला परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म सा संग पाप मान हुआ तो भगवत गुमाय दूत मोवे भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन रूप विष्ण प्रीत हरक चन हर दैव सब नानक सब भगवत भगवंत का पास पंडित जो मन प्रभुत राम नम आत्म सुत राम नम सार रह पीवास पंडित का उपदेश जाग जीव हर की कथा हर दैव सब सब पंडित फिर जो ना वेद प्राण समृत पूजा मूल सुख मह जान सथूल चह वर नाम को देव देश नानक पंडित कर सदा देश बीज मंत्र सर को ज्ञान चह वर नाम है जापै को नाम जो जो जापै तुखी का दो सार संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर वर तारे पास प्रीत मुक्त पात्र कव तारे सर्व रोग औखद नाम कले आठ रू मंगल गुण गाम का जुगत के तना पाई तरम नान मिले जस लिखया तुर कर्म जिसका मन पार ब्रह्म कर वह दुख नाम सत राम दास सातम राम दस नद्रिया दास संतरण पाई तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास सुदर गह प्रवान अपने दह का आप कृपा कर दस दास का सब सो जीव पर सकल संगातम उदास सर जुगत नान कराम दास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सोग कहावे दस हर तह सोग सदा आनंद तह वियोग तह स्वर्ण तह शिव समाटी तह समृत तह विखाट तह समान तह अवमान तह सरंग तह सारा जान जोर तह साई जुगत नानक हो पुर कही आय जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाक जित जित कार राख तह सतनाय आपी करण करान जोग प्रभ पावे सोई फन होग बसरे भुयान तरंग रखन जाहि पार ब्रह्म करंग जय सिमात दी तैसा प्रगाह पार ब्रह्म करता बना सदा सदा सदा दयाल सम शिव नानक हर श्लोक उस्तत करहि अनेक जाने अंत न पारा नानक रचन प्रभु रची वह विदन प्रकार अष्टपदी कई कोट हुई पुजार कई कोट आचार व्याव हरि कई कोट वैद्य तीर्थवास कई कोट मन प्रमा दास कई कोट वेद के स्रोत कई कोट तपी स्रोत कई कोट आत्म ध्यान तार कई कोट का कवि विचार कई कुंडावत नाम त्यो नान करते कांतना पार कई कोट पाया मन कई कोट आंदा गया नहीं कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभेगा आत्म कोर कई कोट पार दर्भ का हिर है कई कोट पर दुख न कर कई कोट माया श्राम माह कई कोट पर देह प्रमाह जेत जेत लाभ देत देत लगना नान कर दि की जान करता रचना कई कोट सिद्ध जदि जोगी कई कोट राज रह भोगी कई कोट पंखी सर्व्यापाई कई कोट पात बिरखन बजाय कई कोट पावन पाण बह सुंदर कई कोट देह भूमंडल कई कोट शशि अर सूर्न के आदर कई कोट देव दान अंदर सर छात्र सगल समग्री अपना सूत तार नानक जह जह पावै ते सतह नह तार कई कोट राज सताम सतक कई कोट वेद प्राण समृत रसा सत कई कोट की रतन सुमृत कई कुंड नान प्रकार जान कई कोट की चर जीवे कई कोट गिरी मीर स्वर्ण धीवे कई कोट जाख किनर पसाच कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगा सब दिन सब तू नानक आवरे उतरहिया पार पूर कई कोट पाताल के वास कई कुंडार स्वर्ग निवास कई कोट जन्म है जीव हमारा कई कोट बाजो नहीं फिर है कई कोट बैठ दिख खाए कई कोट काले हैं थक पाए कई कोट की तनवंद कई कोट माया मह चिंत जह जह प्राणा तह तह रख नानक साहब के प्रभ के हाथी कई कोट पाए वैराग राम नाम संग तिन लिवलागी कई कोट प्राप्त हो जाते आत्म मह पार ब्रह्म नहाते कई कोट दर्शन प्राप्यास दिन कमरे प्राप्त बना कई कोट मांगा साध संग पार ब्रह्म लगा रंग जनक होया सो प्रसन्न नानक दी जन सदा धन धन कई कोट खण अर खण कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होया अवतार कई जुगत
श्री उपासाद सदा सदा एक एक अंकार कई कोट की नह पात प्रभु प्रम समाता कंदन जन को आप नान प्रभ सोई कई कोट पार ब्रह्म के दास दिन हो दयात पर कह कई कोट दाद की बेदी सदा ने हारा कुने द्रे कई कोट नाम रह पीव अमर पय साध साध ही जीव कई कोट नाम गुण गावे तुम रास सब सहज समावे अपने जान का सा सा सुमारी नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रवी कह दूसरा ना कोई नान धवल हार न जल धर्म ही अल सोया सुपति कर्ण करावन करना जोग जोध पावे सोई होग नम थाप नारांत किस पारा वर हुकुम तार तार रहावे हुकुम उपजा हुकुम समावे हुकुम उच नीच व्या हार हुकुम अनक रंग प्रकार कर कर दिखा अपनी उड़िया नान सा मैं रह समय प्रभ पावे मानोक पद पावे प्रभु पावे तो पाथर तराव प्रभु पावे बिंसास दरख प्रभु पावे तो गुण पाखे प्रभु पावे तो पत तो धरे आप करे अपन विचार दोह सिर का स्वामी की रे विकस अंतर जम जो पावे सुकार करावे नानक दृष्टि के वरना या कह मान उख दी क्या हो या जो पावे सोई करावे सुकार दो तो सब की दिए जो दे पावे सोई करी अन जानत विखिया महाराज जानत आपन आवे चाहे परम कुल दह दे

छुड़ाई। इसका बैल नाहीं सहत कर्म क्रम सर्वगुनाथ कर बपरा जियो जद पावे सुई फुन थियो। कबहु नीच मह बसा कबहु सो घर खरंग हसा कबहु नींद चिंद व्यवहार कबहु आकाश पयाल कबहु बीता ब्रह्म विचार नन का मिलावन हार कबहु निरत कर बपा।

गुरु प्रसाद नानक साहिब जी कहे कबहु होइ पंडित करि बखियान कबहु मन तारि राव ध्यान कबहु ताड़ दीप से स्नान कबहु सिद्ध साधि को मुख ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग हुई ज्ञान जन परम परमिया नाना रूप जन स्वागत दिखा जो प्राप्त पावत वह न चाहे जो पाव सोई हो नानक जाओ ना कोई कबू सा संग देहु पावा सह स्थान बह नावा अंतर हो ज्ञान प्रकाश हो सह स्थान करह बिना मान ताना व्रति करंग सदा बस पार ब्रह्म के संग ज्यों जल मह जलाय खटाना त्यों ज्योति संग जो संवादा मिट गए कौन पाए विश्राम नानक प्रभु का सतगुरबान सलोक सुखी बसा मुसगिन अनुवार तलिए बड़े बड़े अहंकारी नानक गर्भ करे अष्टपदी जिसके अंतर राज अपमान सो नरक पाति वसमान जो जाना मैं जवन मंत सोवत बिष्टा का जंत आवश्यको कर्म मंत कह जन्म मरा बह जौन प्रमा तन भूमिका जो करा कुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जग हृदय गरीबी वसावे नानक की हाम कता का सुपाव तनमता फिर कर कृपावे तृण समान काश संग न जाय बहल कर माया न ऊपर कर आह पर भीतर तक हो बिना सब ते आव जाना बलवंत कहन वा हो जाय बसमंद के सना पाता अहंकारी धर्म राय तस्करे कुवारी गुरु प्रसाद जा कर मेट अब मास हो जा नानक दरगह प्रवान कोट कर्म करा हाउ तारी श्रम पावे सगले व्यर्थ हरि अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन करा दोनों हंद्राव हर दरगह कहो कैसी का व्यास का जो पर कह तो सब बुलाई निकट न आवे सर्व की रेन जा को मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोई आप सको जो भला कहवे तो सह भलाई निकट नावे सर्वगिरी जा को मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोई जब लग जाना मुझ ते काश होए तब सकाओ सुख नाही कोई जावे जाना मैं किस करता तब लाग गरु जन में फिरता जब तारे को बैरी मी तब लाग नीह चल नाही चीत जब लग मुह मगन संग माई तब लग तन राय दिवस जाय प्रभु कृपा दे बंधन टूटा गुरु प्रसाद नानक छूटा सहस खट लाख कौड़ तावे त्रुत न आवे माया पाच पवन भोग बिख्या की करे न त्रुतावे खाब कमरा बिना संतोख नहीं को राज स्वप्न मनोरथ वृद्धि सब का जन रंग सर सुख बड़ भाग्य सब राव दे कन करावन आप सदा सदा नानक जाय कन करावन करण हार इसका हाथ कह विचार जैसे दृढ़ करे तैसा हुआ प्याप आप रसोई जो कृष्ण सो अपना रंग सब दूर सब हो का संग बुझा दिखा कर बबी का पही का पहानी कुमारा नवन साव न जय नान साधु ही रहे समाय आप उपदेश है समझ आप अपिर सबके साथ आप कि अपन विस्तार साहब का शोष कहो करण यार उसके पेन कहो किशोर धान धनांतरे का

सुबह गुरु का मान माना। सो सेवक परमेश्वर की गात जाना, सो साधु ब्रज श्रद्धा हर नावन कुबार गुरु का बल जाऊ। सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार, ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार, ब्रह्म ही कह कह परम सहस सियान पलया न जाई। अनन गह गुरुड़ भागी पाया, सफल दर्शन पीखत पुनीत, परसत चरण गात निर्मल रीत, पेटत संग राम गुण रवि पार, ब्रह्म के दर गह कवि सन का भजन करन आय गह निम संतोख खत्म पति आने पूरा गुर आख्या। जा का मंत्र अमृत दृष्ट पीखा वे संत गुण बेअंत, क्यों नहीं पाए नानक जय पावत हरि मलाई। जिह भाई पुस्तत नेक सतपुरख पूर्ण पवीक, कह बोल न पह चित प्राणी, अगम गोचर परम निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदायता, की कीमत कना न पाए अनक भगत बंधन, नियत करह चरण कवन करदाय सिमरह। साध बलहारि सतगुर अपने नानक जिह प्रसाद, सप्रभ जपनी हुहार रास, उपावै जन कोय अमृत पीवै, अमृत सोहै उस पुरख।

दुख तह दिनाशी तब तुम्हें ठांड वरताई, तब तुम्हें ठांड वरताई। आनंद पया दुख नठ पाए, जन्म वन के मिटिया देश साध के पुन उपदेश पाओ, चूका निरपाओ हुई बसे, सकल व्याद मन देखा नसे। जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जब नाम रारी, धित पाई चुके प्राम का मन सुन, नानक हर हर जास राम ने अर्गुनाव सर गुण पी, वही कला तार जिन सकले मोही। अपने चरत प्रभा बनाए, अपनी किमत अब पाए, हार बिंदु जाना को सर्व निरंतर एक सोय ओत पोत, रव्या रूप रंग पाए प्रकाश, साध का संग राज रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बल हर सलोक, साधना चाल बिन भजन विख्या सगरी सार, हर हनम कमावना नानक हुतान सार अष्टपदी।

शरणाई। नानक की प्रभियंती अपने भक्ति लाए अष्टपति जाच जाच प्रावधान कर कृपा दीप हर नाम साजन की मांगा दूर पार ब्रह्म सरदा पूर सदा सदा प्रभु गाय सा प्रभु तुम्हें दिया।

तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शत लगत कहु गीस जह जो स्वरूप जो संग समावै तह जस भूख कवन त्रवतावै करन कराउन करने आर नान करते का नह सुमार जब अपने स्वभाव अपन संग बनाई तब कौन माय बा मित्र सत पाए जह सर्व कला आप है परवीन तह वेद देव कह कौ चीन जब अपन आया पुआ पुर तार तो सगन अब सगन कह विचार है जहाँ अपन ऊचा अपना नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया जेरा विस्मन विस्म रह विस्म नानक अपनी गात जान हुआ जहाँ अचाले अशेद अभेद समाया ऊह किस व्याद मया उसको आप दीस तेहु गुण का नाह प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत कहला का चिंता जह अपन आप पति यार तह कौन कथा कौन सुनने हर व्यंत उज तुजा नानका उस कौ आप है पा ऊचा जह आप रचय प्रपंच अकार तेहु गुण मह किन व्यस्था।

सकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, जिनी नाम थे आया गए मुसकत काल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाह दसवीं छपै चंद त्वै प्रसाद। चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख भेख, को कह ना सकत के। अचाल मूर्तन भव प्रकाश संतोज, कही जय कोट इंद्र निदरान, साहे साहण गुण जय त्रिभवन महीप, सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत, त्वै सर्वनाम कथ कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत पुजंग प्रयात छंद। नमस्तवं अकाले, नमस्तवं कृपाले, नमस्तंगारूपे, नमस्तंगानूपे, नमस्तंगापेखे, नमस्तंगलिखे, नमस्तंगकाये, नमस्तंगाजाये, नमस्तंगगंजे, नमस्तंगपंजे, नमस्तंगनामे, नमस्तंगठामे, नमस्तंग कर्म, नमस्तंग धर्म, नमस्तंग नाम, नमस्तंग ताम, नमस्तंग जीते, नमस्तंग पीते, नमस्तंग बाहे, नमस्तंग डाहे, नमस्तंग नीले, नमस्तंग नादे, नमस्तंग छेदे, नमस्तंग गाधे, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग पारे, नमस्तंग सुयके, नमस्तंग नुके, नमस्तंग पुते, नमस्तंग जूपे, नमस्तंग निरकर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निरपेशे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग पूते, नमस्तंग लोके, नमस्तंग सोके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग थापे, नमस्तंग त्रिमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग गाहे, नमस्तंग बाहे, नमस्तंग त्रिवर्गे, नमस्तंग सर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सुजोगे, नमस्तंग रंगे, नमस्तंग भंगे, नमस्तंग गमे, नमस्तस्त रमे, नमस्तंग जलाश्रे, नमस्तंग निराश्रे, नमस्तंग जाते, नमस्तंग पाते, नमस्तंग अजबे, नमस्तस्त अजबे, अदेशंग अदेशे, नमस्तंग पेशे, नमस्तंग निरतामे, नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वभूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्त देवे, नमस्तंग अपेवे, नमस्तंग जन्मे, नमस्तंग सुबन्वे, नमो सर्वगाणे, नमो सर्वपाणे, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वभंगे, नमो काल काले, नमस्तस्त दयाले, नमस्तंग वरणे, नमस्तंग मरणे, नमस्तंग जराट, नमस्तंग कृतारे, नमो सर्वतंदे, नमो सत अबंधे, नमस्तंग साके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सुहागे, नमो सर्व सोखंग, नमो सर्वोखंग, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले, चाचरी छंद त्वै प्रसाद। अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अपू हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अनाम हैं, अकाम हैं, अधेय हैं, अपेय हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निधान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निर्श्रीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अक्रम हैं, अप्रम हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह है, अगा है, अमान है, निधान है, अनेक हैं, प्रेक हैं, पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने, समस्ते निधाने, नमो देवदेवे, अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपाणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे, समस्ति विभूते कलंकं बयाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेशं परम रूपे, नमो जोग जोगेशं परम सिद्धे, नमो राज राजेशं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेक्षी अपरमी अपोगी अभुगते, नमो जोग जोगेशं परम जुगते, नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत आप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहंग, नमो कूप कूपे, नमो दान दानी, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान।
नमो मंत्र मंत्र नमो यंत्र यंत्र नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालंग छेदी अपेदिया नाम काम समस्तो पराजय समस्तस्त तामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रिया तुच्छांत अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहि नमो माह माहि नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रुख रुखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तान नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व यंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आदि रूपनाद मूर्तियान प्रकपार सर्वमान त्रिमान देव पेव आदुदार सर्वपाल सर्वकाल सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज अवतूत रूप प्रसाल नाम ठाम न जा जाक रूप रंग न रेख आदि पुरखोदार मूर्त जौन आदि असेख देश और न भेस जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसा होय फैलो अनराग नाम काम बहिन पेखर ताम हुनह जाय सर्वमान सर्वत्र मान सदाय मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेलन खेल खेल अखेल खेलनंत को फिर एक दे पेव ना जान ही जे वेद और कतेव रूप रंग ना जात पात सुजान ही के जेब तात मात ना जा जक्र जर मरण बहिन चक्र वक्र फिर चत्र चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप जह जाप आदि देवनाद मूर्त थाप्यो सभ्य जह थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्वरचियो सुयंग भव गढ़ पंजनहार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सु परम रहते अपूत अलख अपेस अंग राग नरंग जाके जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमित अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म ए पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन भेख सर्व शास्त्र ना जान जे रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जाके नीत भक्त नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवहि बहु चित मधुपार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमाया पार आसन भंग उपमान अंग अनुभव प्रकाश निजन नाश जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान कालन पूतंग आपंगत मित अपार गुण गुण उदार मुन गण प्रणाम निरपह निकाम आत दुत प्रचंड मित गाते अखंडाल स कर्मा दृश्य धर्म सर्वापरणांडे अंडट बाढ़ चाचरी छंद प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियन नामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद ना सतरे ना मित्रे ना ब्रह्म न पितरे ना कर्म न काया जन्मंग जाए ना चित्रे ना मित्र परे पितरे पृथ्वी से आदि से आदर सह आकर सह भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आच जिदे से कया भिज पै के भिज भिष सह क्या गंज करमे क्या भंज पर मैं क्या भिज लोक है क्या जित सो कह क्या अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजम कुरम है के धर्म कुज है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है
के जगतम कृति हैं, के छतरंग क्षत्रि हैं, के ब्रह्म स्वरूप है, के अनुपन उपय, के आदिदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रंग बहीन है, के अधिन है, के रोजी रजा के नहीं मेरे हाके, के पाक बेऐब हैं, के गैबल गैब हैं, के फुल गुनाह हैं, के सान सा के कारण करण हैं, के रोजी ध्यान हैं, के राज करही में, के कर्म करी में, के सर्वंग कली हैं, के सर्वंग दली हैं, के सर्वत्र मान हैं, के सर्वत्र दानी, के सर्वत्र गौण हैं, के सर्वत्र पौण हैं, के सर्वत्र दिश है, के सर्वत्र पीस है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहु, के सर्वत्र पाहु, के सर्वत्र दिश है, के सर्वत्र पीस है, के सर्वत्र काले, के सर्वत्र पाले, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पीखी, के सर्वत्र पीखी, के सर्वत्र काजे, के सर्वत्र राजे, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राणे, के सर्वत्र पुराणे, के सर्वत्र दिश है, के सर्वत्र पीस है, के सर्वत्र मान्य सदैव प्रदान, के सर्वत्र जाप है, के सर्वत्र थाप है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंकली में, के परमंग महिमे, के आकलला में, के साहब कला में, कुशल वजू है, तमाम रजू है, हमेशु सलाम सली कदम उदाम गनी मुल शिकस्ते गरीब परस्ते बुलंद मकान जमील जमाने तमीज तमाम रजूल निधान हरीफ लजी मेरे जायक यकीन है, नेकल तिरंग है, भेद है, अपंग है, आजी जल निवाज गनी मुखी राज है, निरुक स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुगत प्रभा है, सुजुग सुधा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनुरूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्व साज है, समस्तुल सलाम सदैव काम निर्वास रूपया गाथ है, अनूपे ओंगाद रूपया नाथ स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्ग त्रिवाद दे गंदिया गाद सुभंग सर्पागे सुसर्वानुरागे त्रिपुक्त स्वरूपया छिद हैं अचूत हैं, के निरंग प्रणास हैं, कृतपद प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैव सदैव विपुक्त स्वरूप हैं, प्रजगत अनूप हैं, निरुक्षदा हैं, विपुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रजगत अनूप हैं, चाचरी छांद भंग हैं, नंगे पीख हैं, लेख हैं, अपर्म हैं, कर्म हैं, नाद जुगाद हैं, आज हैं, अभ हैं, भूत हैं, तूत हैं, नाश दास हैं, तंध हैं, बंध हैं, आप भक्त हैं, विरक्त हैं, नाश प्रकाश हैं, चिंत हैं, सुनित हैं, लिख हैं, दिख हैं, लेख हैं, पीख हैं, अटा है, अगा है, संभ हैं, गंभ हैं, नील हैं, नाद हैं, नित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, आजाद हैं, चरपट छंद प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वमुक्ता रसावल छंद प्रसाद नमो नरक नाशे सदैव प्रकाशय अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमासदा सर्वसाथे अगा स्वरूपे निर्बाध भुक्ते निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैव प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सुलसला में समस्तुल कलाम के साहिब दिमाग के हुसन चराग के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहन दे के राज रहन दे करीमल कमाल के हुसन जमाल गनीम राज गरीब लवाज हरीफुल चिकन हिरासुल चिकन है कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनी में रजाय करीम है समस्तुल सुबह के साहिब ग्रह के नरम प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमें सुलरवन है तमामल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है आदेशुल अलेख है हमें सुलपेख है जमिल जमा है मीकुल माह है करीमुल कुमाल के जुर्त जमाल के अचल प्रकाश के अमितो सुभाष के अजब स्वरूप के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंगनंग है के अमितो अपंग है मधुपार छंद प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुनमल सलाम हर नर अखंड बरनर यमंड अनपमनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम दलथल मुदाम अनछिद अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जलथल मंड दिशवस भंड जलथल महंत दिशवस ब्यंत अनपमनास त्रित तरतुरास अजान बाहु के सदा हो ओंकार आदि कथनिया नाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजज न बात अनझंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठटया पार आडीठ धर्म मत ढीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंतर बोल मना छंद प्रसाद करुणाल हैं अरकाल हैं खलखंडन हैं महमंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कल कारण हैं सर्व उबारण हैं तृत के तरण है जग के कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग करें सर्वास हैं सर्वनाश हैं करुणा करें विश्वंभर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खल खंडस हैं
पारते पर हैं करुणा कर हैं जपा जप हैं अथप्पा थाप हैं आकृताकृत हैं आमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करुणा करते हैं आकृता करते हैं धरणी तृत हैं तेसर हैं परमेश्वर हैं आकृता करते हैं अमृतामृत हैं अजबा करते हैं अमृतामृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं विश्वम्बर हैं करुणाल हैं निरपनायक हैं सर्वायक हैं पवपुंजन हैं अर्गंजन हैं ऋतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हर्ताहर हैं परमात्मा सर्वात्मय आत्म बस हैं जसके जस हैं भुजंग प्रयात छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रि नमो राज राज नमो इंद्र इंद्रि नमो अंधकारि नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगी नमो ज्ञान ज्ञानी नमो मंत्र मंत्रि नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पानी नमो कलहकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे कछरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास कास गंज पंज अलख अपख अकाल दयाल लिख पीख नाम काम अगाह अटाह नाथ परमाथ अजोनी मोनी नराग नरंग नरूपे नरेखे अकर्म अपरम अगंजे अलिखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजु अनामे समस्तुल निवासे निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासे सुतर्मं विपूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासे करिमुल्क निंदा समस्तुल निवासी अजायब विपूते गजायब गनिमे हरियं करियं करिमुल रहिमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पाशाह दसवीं त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख प्रयोग कर जो जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सोभारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के पूप पली बिध न्यावत शीस ना जात बिचारे इते पए तो कहाँ पए पूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाज तटोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ के जान के सुंदर हिंसत ही हयार हजारे भूत पविक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिना अंत को अंत के ताम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुराम जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जतार सभय सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिपा दुरंत दुभा सुशासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंखले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बिरयार आ बिचारे सार की तार पशया तोर देश मिलंद मवासन माते गजान के मान मलया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सुबात नहीं चकचार लवया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवया दान देख निंद निशाचर भूत पविख पवान जपेंगे जीव जते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे
पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन कह बहु पुंज कपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरै जग सतर सबै अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र निराध पजौं त्रिलोको राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक सुअंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिसन सच्ची पत अंत फसे जम फास भरेंगे। जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठो भक्त्या लगायो। नहात बिरुलिये सास मुंदर लोगे उपर लोग गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही।

सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आप हर पूरे।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।